महडगावाति महसूर वरद विनायकाच तिथ एक मंदिर मंदिर लय साध सुध जस कौलारू घर घुमटाचा कळस सोनेरी नक्षी

0: 90.8 FM पर ऑलवेज हार्ट टचिंग।
1: एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए।
2: नमस्कार दोस्तों, 90.8 FM रेडियो मन भावन पर मैं हूं आपका दोस्त मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो। दोस्तों, संगीत सुनने के लिए हमें साजों की जरूरत होती है, सितार, बांसुरी या तबला। लेकिन क्या आपने कभी उस संगीत के बारे में सुना है जो बिना किसी साज के बजता है, जिसे सुनने के लिए कानों की नहीं बल्कि मौन की जरूरत होती है। कबीर साहब आज हमें उस अनहद नाद की दुनिया में ले जा रहे हैं जहां ईश्वर का संगीत 2400 घंटे गूंज रहा है। आज का दोहा उस रूहानी अनुभव की बात करता है जहां ज्ञान का झरना बहने लगता है और आत्मा उस परमात्मा में लीन हो जाती हैं। आइए जानते हैं उस अनसुने संगीत का रहस्य। श्रोताओं, इस दोहे में कबीर साहब साधना की उस चरम अवस्था का वर्णन कर रहे हैं जहां साधक को ब्रह्मांडीय ध्वनियां सुनाई देने लगती हैं। अनहद बाजे निर्झर झरे उपजे ब्रह्म ज्ञान, अविगति अंतरी प्रगटे लागे प्रेम ध्यान।

श्रोताओं, कबीर साहब कहते हैं अनहद बाजे निर्झर झरें। अनहद यानी वह ध्वनि जो दो चीज़ों के टकराने से नहीं बल्कि अपने आप गूंज रही है। कबीर कहते हैं कि जब भीतर का कोलाहल शांत होता है तो वह अनहद संगीत सुनाई देने लगता है, और जैसे कोई अमरूद का झरना निर्झर यानी बिना रुके बहने लगता है। इसी अवस्था में उपजे ब्रह्म ज्ञान, यानी यह वह क्षण है जब सच्चा ब्रह्म ज्ञान पैदा होता है। यह किताबी ज्ञान नहीं, यह अनुभव का उजाला है। अगली पंक्ति में कबीर उस मिलन की गहराई बताते हैं, अविगति प्रगटे अंतरी। अविगति यानी वह परमात्मा जिसकी गति कोई नहीं जानता, जो निराकार है, वह कहीं बाहर से नहीं आता, वह हमारे अंतर यानी हृदय के भीतर ही प्रकट होता है। और तब क्या होता है, लागे प्रेम ध्यान। साधक का ध्यान अब दुनिया की चीज़ों में नहीं बल्कि उस ईश्वर के प्रेम में ऐसा लगता है कि फिर कभी टूटता नहीं। यह ध्यान नहीं, यह तो उस परम सत्ता के साथ एक हो जाना है। कबीर साहब यहाँ हमें समझा रहे हैं कि असली भक्ति कोई बाहरी शोर शराबा नहीं है। असली भक्ति वह शांति है जिसमें आपको उस विधाता का संगीत सुनाई देने लगे। आज का चिंतन, दोस्तों आज विचार कीजिए कि हमारे जीवन में कितना शोर है। विचारों का शोर, शिकायतों का शोर, दुनिया की भागदौड़ का शोर, क्या इस शोर के बीच हम उस अनहद को सुन पा रहे हैं जो हमारे भीतर लगातार बज रहा है। आज कोशिश कीजिए दिन भर में कुछ पल एकदम खामोश बैठने की। जब आपकी जुबान और आपका मन चुप होगा तभी वह आंतरिक संगीत सुनाई देगा। याद रखिए, ईश्वर आपसे शब्दों में नहीं मौन के संगीत में बात करता है। बस प्रेम का ध्यान लगाइए, ज्ञान का झरना खुद ब खुद निकलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ सुनो भाई साधो 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए राम राम।

0: स्वर अपन ट्यून के लिए रेडियो मन भावन 90.8 FM ऑलवेज हार्ट टचिंग।
1: एक लाजरन साजरा मुख

0: छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: देखो दिल न तोड़ो,
0: पर छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे
0: अज समझे।

अगर तुम ना होते। संगीतकार आर.डी. बर्मन, गीतकार गुलशन बावरे। हमें और जीने की चाहत ना होती।

0: क्या कर रहा हूँ?
1: भैया छोड़ो ना।
0: क्यों छोड़ूं?
1: प्लीज समझो ना।
0: क्या समझूं?
1: वो लोग देख रहे हैं।
0: अरे तो देखने दो और जलेंगे।
1: अच्छा तो ये बात है, तो मैं और पास आऊँ?
0: आओ ना।

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

0: दीजिए सरकार।
1: कहना था कि मैंने शराब छोड़ दी है।
2: ओह नो।
0: मैंने तो सुना था आप दिन रात शराब में मदहोश रहते हैं।
1: रहता था, आजकल बगैर शराब के मदहोश रहना सीख लिया, नजरों से देखा।

0: दिल से सुनो, दिल से सुनाओ, रेडियो मन भावन 90.8 FM, ऑलवेज हैड टची।
1: सुपरहिट गाने इस चैनल पर ही है सुनहरे गाने और कुछ यादें। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन।

मिले दिल तेरा नम होगा के नहीं, बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं, मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का, बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं, अरे बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं।

0: श्रोताओं, कबीर साहब कहते हैं अनहद बाजे निर्झर झरें। अनहद यानी वह ध्वनि जो दो चीज़ों के टकराने से नहीं बल्कि अपने आप गूंज रही है। कबीर कहते हैं कि जब भीतर का कोलाहल शांत होता है तो वह अनहद संगीत सुनाई देने लगता है, और जैसे कोई अमरूद का झरना निर्झर यानी बिना रुके बहने लगता है। इसी अवस्था में उपजे ब्रह्म ज्ञान, यानी यह वह क्षण है जब सच्चा ब्रह्म ज्ञान पैदा होता है। यह किताबी ज्ञान नहीं, यह अनुभव का उजाला है। अगली पंक्ति में कबीर उस मिलन की गहराई बताते हैं। अविगति प्रगटे अंतरी। अविगति यानी वह परमात्मा जिसकी गति कोई नहीं जानता, जो निराकार है, वह कहीं बाहर से नहीं आता, वह हमारे अंतर यानी हृदय के भीतर ही प्रकट होता है। और तब क्या होता है? लागे प्रेम ध्यान। साधक का ध्यान अब दुनिया की चीज़ों में नहीं बल्कि उस ईश्वर के प्रेम में ऐसा लगता है कि फिर कभी टूटता नहीं। यह ध्यान नहीं, यह तो उस परम सत्ता के साथ एक हो जाना है। कबीर साहब यहाँ हमें समझा रहे हैं कि असली भक्ति कोई बाहरी शोर शराबा नहीं है। असली भक्ति वह शांति है जिसमें आपको उस विधाता का संगीत सुनाई देने लगे। आज का चिंतन दोस्तों, आज विचार कीजिए कि हमारे जीवन में कितना शोर है। विचारों का शोर, शिकायतों का शोर, दुनिया की भागदौड़ का शोर, क्या इस शोर के बीच हम उस अनहद को सुन पा रहे हैं जो हमारे भीतर लगातार बज रहा है? आज कोशिश कीजिए दिन भर में कुछ पल एकदम खामोश बैठने की। जब आपकी जुबान और आपका मन चुप होगा तभी वह आंतरिक संगीत सुनाई देगा। याद रखिए, ईश्वर आपसे शब्दों में नहीं मौन के संगीत में बात करता है। बस प्रेम का ध्यान लगाइए, ज्ञान का झरना खुद ब खुद निकलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ सुनो भाई साधो 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए राम राम।
1: हाय, मी आरजी स्वरा, आपण ट्यून केले रेडियो मन भावन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग।

0: मुसीबत कैसे हो छोटे भैया?
1: ये तुझे कहां से मिली?
0: आज मैंने तुम्हें माफ कर दिया। रक्षाबंधन के दिन भाई बहनों की रक्षा का वचन देते हैं। मैंने आज तुम्हारी रक्षा की, ये कभी न भूलना।

0: दिया गिर गया हाथ से, गिर गया या जानबूझ के गिरा दिया?
1: झूठ क्यों बोलती हो भाभी?
2: मीना, भाभी को झूठा कह रही हो? बेशर्म, शेखर,
3: मेरे पास वक्त नहीं है बातों के लिए, मैं जा रहा हूँ।
1: नहीं भैया, ये तो बहन की प्रार्थना है। बहन हो और भाई राखी न बंधवाए तो बड़ा अपशगुन होता है भैया।
2: होता है तो होने दो।

ठहर मोहिनी। देख चंद्रमा आधा है, रात आधी है, कहीं तेरी मेरी बात भी आधी न।

ये लड़ी है लम्हों की, झालर बना ली है इसकी। कभी पहन लेता हूं, कभी उतार देता हूं। बस यही पेश कर रहा हूं। नाम पता नहीं, रखा भी नहीं। जानता हूं वक्त की गर्द में डूब जाएगा, गुम हो जाएगा। जो याद रहेगा सिर्फ इतना

0: खफा खफा से
1: हाय मर जाऊं।
0: हम भी थे एक नजर के प्यासे,
1: क्यों नहीं
0: दिल पे उसने जो हाथ रखा आ गया आराम।

सुनो अरे सुनो ए भाई और बहनो, अरे मदन भाई छगन भाई सांबड़ो रे सांबड़ो, ओ राघो बा ओ धोंडी बा आई का ओए कर्नल सिंह अरे तुझी भी सुनो पापे।

0: ट्यून इन एनीवेयर रेडियो मन भवन 90.8 FM ऑलवेज हार्ट टचिंग
1: गुड नाइट
2: गुड नाइट
1: हाँ गुड नाइट
2: अच्छा गुड नाइट।

0: उम्र है
1: छोड़ो बहाना
0: ना ना ना।
2: रेडियो मंधावन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग।

खाकर, अरे तेरी भूला आकर जाकर पीकर लेकर, आकर जाकर पीकर लेकर, आकर जाकर पीकर लेकर, पीकर लेकर, पीकर लेकर, पीकर लेकर, आकर

0: बस बस बस बस, सांप पे रुक गया, आगे बढ़। रे के आगे क्या है? अरे वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह, क्या गले में तासीर है।
1: ये बात है तो माँ,
0: चल वापस आ जा फिर से अपनी जगह पे।

0: भेजा सरकार।
1: फाइनल थैंक यू, मैंने शराब छोड़ दी है।
2: ओह नो।
0: मैंने तो सुना था आप दिन रात शराब में मदहोश रहते हैं।
1: रहता था, आजकल बगैर शराब के मदहोश रहना सीख लिया। नजरों से देखा।

0: बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। अरे बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं।
1: जज्जा

0: व्रत कहते हो छोटे भैया?
1: ये तुझे कहाँ से मिली?
0: आज मैंने तुम्हें माफ कर दिया। रक्षाबंधन के दिन भाई बहनों की रक्षा का वचन देते हैं। मैंने आज तुम्हारी रक्षा की, ये कभी न भूलना।

0: दिया गिर गया हाथ से, गिर गया या जानबूझ के गिरा दिया?
1: झूठ क्यों बोलती हो भाभी?
2: मीना, भाभी को झूठा कह रही हो? बेशर्म, शेखर, मेरे पास गर्मी से कुछ बातों के लिए मैं जा रहा हूँ।
1: नहीं भैया, ये तो बहन की प्रार्थना है। बहन हो और भाई राखी न बंधवाए तो बड़ा अपशगुन होता है भैया।
2: होता है तो होने दो।